घन घोर घटा छाई सावन की तीज आई घन घोर घटा छाई मेघन झरी।

प्यारी देखी कुंवर किशोरी, देखी कुंवर किशोरी।

की सुन अर्ज दसिक जन की सुन अर्ज दसिक जन की करो चरण बंदनी सुन अर्ज दसिक बन की

कलियां सगरी पंख पसारे, कलियां सगरी पंख पसारे, ले तन रस मुस क्या गई चबकी।

कबूल करते हैं भोरा बसत मेघ नचत है मोरा बसत मेघ